0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
0: मोहब्बत समेट कर
3: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
0: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
3: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है, प्यार की एक दुनिया लेकर,
2: मोहब्बत समेट कर
3: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
2: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
3: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का।

आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगे तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बडग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
2: अमन दरुह संदरदा।

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
3: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
2: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: मेसेज डिटेल देते रख लेते जी टीम जेर वाला डिटेल मुबारक जी आप बिल्कुल जनाब विनर रख लेते मैसेज शामिल कमान वालेकुम सलाम आयजा खोरी खदर जी मैसेज दे कबूल का मेरा हा गुली मैम बल मैसेज रख लेते जनाब था अज लाला माता संग प्ले के कहना नफीसा खान दुरानी मैम जबल पुरंग कुशिंग महताज भी
1: जीत हो या हार हो दिल में अपने
0: जी फोन लगी बोले मैसेज लगा जी
1: सीटी बजेगी तेज सजेगा और ताली बजेगी अब फिर
0: बिल्कुल ऐसे दगा शनि टोल इंग्लिश कहोगे ना
1: सजेगा
0: बोले मैसेज लगा जी ना भाई दचा जी सलाम को वालेकुम सलाम देना बंदना गेम तो होड़ गया सारा तो जबर ग्राम ना बिल्कुल जनाब टीम जबर वाला है फाते कड़ल टीम जेर वालों को लफाई उकड़ला और भाई सासु दी सवाल जवाब दे हम खुद बिल्कुल जिना दगा जवाब सही दम चारा खड़े दे ना मैं खुद खैर सरा न दे निकले भाई दस जवाब सही दिया यो उरुज खुद के बगम जवाब सही रख लो एसएमएस दिला रे आई महमूद खान और आयुब काका जीत मुबारक आयुब काका ता मुबारक जीत जीत वत मुबारक से दिया आई महमूद खान दे ना ज्यादा मनने जी सासु दो कॉल पे गया खलो
1: नजर उतार के
0: तुम दो कॉल राशिद दो कॉल जो बगम शामिल को खै भाई दे कॉल तर जिक्र मु सरा कॉल कौन के सुख दे उधर कम से ने दी अस्सलाम वालेकुम जी
2: अस्सलाम
0: वालेकुम जी वालेकुम असलम आरिफ कुल माड़ा दिन बके तो गायब हुए पूरा खामोशा से रहा
2: माउरी
0: उगट आयुब काका देखो वड़ो गेम
2: आयुब काका जिंदाबाद मुबारक आयुब काका जबरदस्त गेम
0: आज गेम सिंह गेम असान को ग्रहण हो
2: डेढ़ बजे खानदान मुश्किल हो
0: दादा तो या
2: जी
0: बेचे रिक्शे द्री अखबी
2: सजेंडा सजेंडा
0: कहना
2: कच्चा पापड़
0: मजे उगड़ा कहने जा रहा था
2: देर मजे उगड़ा
0: टाइम खूब इतना नहीं जाए कड़े के ना
2: नहीं टाइम जाए
0: डेरे से मन को वालेकुम सलाम डेरे मन जी नम सर अरे जमान डेरे तक घर करो डेरे से मन ने कहूँ बोले मेरे से गुड नाइट भाई मेरा हकू जी मेरे से मन ना बल मैसेज लगा लेते जी आई एम खुद निम्रादा यस निम्रा सासु जवाब चीज बिल्कुल सही दे वे हम खुद आगा सुख देखम सासु दा वालिदैन औलाद दी और आगा सासु रोर दे और ना खोर दा आगा सासु बखपल है हां बिल्कुल जनाब ने मेरा उन सही जवाब रखा दे देर से तमने ने को बाय द वे कॉल तर गुरु सर बल कॉल कौन सुख दे कम जाने अस्सलाम वालेकुम जी
3: वालेकुम अस्सलाम प्रोफेसर सर खैर भी
0: खैर खैर सासु दो आगाने अबू मोहम्मद अदारत में गेम खो मजा उकड़ा के ना
3: मुबारक
0: खबर
3: ग्रानो
0: जी जी जी
3: सवाल जैसे मैं पा रहा हूँ अखिल पूरा का चले गुला क्या अगला सोच नहीं होगा अगर मारा सोच
0: लो बस बाबा दास दिन में सूझी ना कहीं अबू मोहम्मद मतलब ख्याल नहीं का प्रोग्राम ख्याल भरते नहीं लेकर गौर सर ना हो रही
3: बिल्कुल
0: नवाज खुदा से भी जगह अगर सवाल नहीं करना सोच को राजीब
3: सोच को
0: आज गेम को जबरदस्त हो ना
3: खुशहाली
0: هغه سره مال ډیره خندا راغله
3: دا خلک چې داینه دي چرګ د وټي ورنی نه
0: بعد پته مې کې ودی غلطي کی کنه کله هغه هغه وړي کله مدي فاوړي ډیر زړه مننه کوم محمد خوشاله تاسو کې پهل حافظ جی بالکل جی دا اوس راو ابو محمد ډیر زړه مننه کوم ٹیم زیر والا چا گئے بل میں سے جاگل دے ایو گا کا تے ڈیر ڈیر مبارک شی ابو محمد لالا نند گیم ہڑے رجت منا نی میں کال تے گرو سر کال کون کی سک دیو تے کم زیر دے السلام علیکم جی
4: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
4: نیم زادہ خبر کوم جی
0: جی نیم زادہ
4: سہی
0: ڈیرا مند نہ خوشحال ہو تو سو گم دے